संगीत 106.1 FM, मोर देन जस्ट म्यूजिक, दिस इज अस, द बेस्ट मिड मॉर्निंग वाइब्स, मंडे टू फ्राइडे, इनसाइड द बिग शो विद बिग डैडी, संगीत 106.1 FM, दिस इज अस, फ्रॉम द फाउंडेशन टू द फ्यूचर, बिग डैडी गिव्स यू ऑल द वाइब्स इनसाइड द बिग शो, ओनली ऑन संगीत 106.1 FM, दिस

0: vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. Music.